0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: ओए असीं लौरिए हुन्ने आ सियाने बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे जलाक बंदे दी असीं अख पढ़ लैने।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਦ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨਰ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
2: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: Overseas released by Zee Studios.

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही भरोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: टुट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू
1: है पुत पहला मैं अंग्रेजी बोल के दिखा
2: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ
1: हूँ मेरी जेठानी नु पता लगू कि साडे घर भी अंग्रेजी आ
3: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो
4: ना पुत इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है
5: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।
3: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Oh, ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Australia vich immigration da masla. Na jao idhar udhar. Sidhe aao IME advisor. Apni maa boli vich samjhan tuhadi lod nu. Nale varyan to skilled visa. 186 189, 190, 482 to 491. Skill assessment, partner visa, parent visa, just student visa to PR tak. Har immigration process le expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parramatta, Sydney ati New Delhi vich vi. IME advisor.
6: Diwali roshni ka tyohar. To chalo shaan ke saath zaike se lagaye isme char chaand. रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियो प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: सतिकाल, मैं हूं जिनी शेर गिल, से तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: ஹாஜி 1674 AM 24/7 இந்தியன் ரேடியோ சிட்னி கா அப்னா இந்தியன் ரேடியோ ஸ்டேஷன்
1: थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सोखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
4: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
4: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 186 189 482 491 ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲ 02-9063-1618 ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
1: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Udhe ek border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
0: Australia vich immigration da masla. Na jao idhar udhar. Sidhe aao IME advisor. Apni maa boli vich samjhan tuhadi lod nu. Nale varyan to skill visa. 186 189 190 482 491 skill assessment partner visa parent visa cha student visa to PR tak har immigration process liye expert guidance aaj hi parose naal sampark karo IME advisor call 02-9063-1618 hun parameta sydney ate new delhi vich vi IME advisor
7: din bhar de kamma karan ch ghar paise bhejna shamil karna chahunde ho zindagi tuhanu chahe jithe vi le jave world remit naal tusi apne phone to hi जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल सब तो रुझेवे वाले दिनां च वी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
8: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
8: बेस्ट डील लई कॉल करो 04314651186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
10: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
11: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
10: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
11: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 04066609606 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
12: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
13: ओ जो हुकम मेरी सरकार
12: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
13: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
12: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
13: आहो जी आहो
12: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
14: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट
15: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
16: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
14: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावर एंड मेनी मोर
17: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
14: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
17: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
14: Overseas release by Zee Studios.

0: स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinemas 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Z Studios.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
9: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
10: Desh bhakti to yaad aa gayi.
11: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
8: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
12: Udhe border chal rahi hai.
8: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
13: Yaar tu itthe inni cheti aake pakka bhi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
14: Jugaad nahi. Eh hai 8 saalan to vi vadda tajurba Bansal immigration da. Jinna ne vadiya course vich admission karai ate फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
13: नंबर दा दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा।
14: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
15: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
16: टुट पैणी इंग्लिश ने, देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू।
17: है पुत, पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा।
18: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली, ही हैव 4 लेग, 2 ईयर, 2 आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
17: हुण मेरी जठानी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ।
18: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
17: ना पुत,
19: इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਐਮਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।
0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: You are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Radio Hanji.
0: Stay tuned.
3: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
4: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
3: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
6: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा?
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
3: Overseas release by Zee Studios.
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: और जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो।
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
4: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: टुट पैणी इंग्लिश ने, देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू।
8: है पुत, पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा।
9: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली, ही हैव 4 लेग, 2 ईयर, 2 आई, वेरी गुड, शी वेरी फास्ट काओ।
8: हुण मेरी जठानी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ।
9: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
10: ना पुत, इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।
11: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
12: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
13: Deshbhakti to yaad aa gayi.
14: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
11: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
15: Udhe border chal rahi hai?
11: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
16: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आईएमई एडवाइजर।

0: टूट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नूं।
1: है पुत पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा।
2: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली। ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ।
1: हुण मेरी जठानी नु पता लगू कि साडे घर भी अंग्रेजी आ गई।
3: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
4: ना पुत, इंसान नु परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी
5: है। दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सादा अली खान इन उड़ता तीर।
6: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
7: देशभक्ति तो याद आ गई,
8: देश कौन सा है ये भूल गया।
5: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
8: बॉर्डर चल रही है?
5: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमाज नियर यू।
9: रेडियो हाँ जी 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Oh,

0: यह है ऑस्ट्रेलिया द नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present।
7: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
9: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
6: Overseas release by Zee Studios.
10: Diwali roshni ka tyohar. To chalo shaan ke saath zaike se lagaye isme char chaand. Rivazon ke rang, khanon ka swaad aur Diwali ka ehsaas rakhein barqarar. अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
11: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा,
12: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
11: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लैंग्वेज इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षर ज्वेलर्स वल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजास PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
6: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो ओ भी वधिया रेटां ते घट फीसां नाल सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
1: ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਅਕਸ਼ਰਾ ਜੂਲਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਲੋ
2: ਓ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
1: ਓ ਆ ਕਿਧਰ ਹੈਰੀ ਸਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
2: ਅਕਸ਼ਰਾ ਜੂਲਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Oh, ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Yaar, tu itthe niche thi aake pakka bhi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
6: Jugaad nahi. E hai 8 saalan to bhi vadda tujurba. Bansal immigration da. Jinnah ne vadiya course vich admission karai. Ate फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर ता दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते
8: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दी नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
3: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाउस। दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
1: नहीं बेटी के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Oh, ye border chal rahi hai.
1: Nahi.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Z Studios.
4: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी, मैं हूँ एक का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो। हाँ जी, 1674 AM बेबी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुण थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए।

0: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Being bliss mein aapka swagat hai.
2: Thank you so much.
1: Aapke homework bahut dangerous hai.
2: What happened?
1: What happened? Kya hai? Ki wo zara chup rehna mushkil ho raha hai.
2: कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं करना है. भले मुश्किल लग रहा हो, रिजल्ट क्या मिलती है?
1: रिजल्ट में सच बताऊं, जब मैंने जोर से बोला ना तीन बार करो, तब हुआ काम.
2: हाँ,
1: तब तक तो तीन बार मैं ट्राई किया था.
2: वेरी नाइस.
1: हाँ, नहीं हुआ.
2: नहीं हुआ. नाउ दिस ऑल्सो व्हाट विल हैपन. मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने जोर से बोला
1: तो हो गया.
2: तो हो गया. अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं.
1: फिर मैंने पूछा भी, क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? तभी आपकी समझ में आएगा कि जरूरी है मुझे चिल्लाना.
2: नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार बहुत ज्यादा अब पता चलने लग गया है. वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम. बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री. सी रिपीटेड पैटर्न. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए.
1: हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा
2: नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना. टुडे मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू डिसाइड कि टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री. एवरीबडी एल्स डजंट नो. या तो अनाउंसमेंट करनी है फिर सुबह.
1: अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं. तो क्या मैं चिल्लाता रहूं?
2: पर रोज वो हो रहा था ना. रोज वो हो रहा था तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो सामने वाला इमिडिएटली चेंज हो जाएगा.
1: इतना वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें. पता नहीं तुम कमजोर सा हो गया, पता नहीं चुप सा हो गया, उदास सा हो गया, ऐसी बातें सुनने में मिलती
2: है. एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था. जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था. इसको पावर समझी हुई थी. नो मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री दैट मीन्स यू आर वीक एंड इवन गेट स्केयर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से. Somebody says something, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. देन थर्ड फियर, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा एंड आई विल नॉट से एनीथिंग. दिस इज व्हाट दे विल फील.
1: नहीं है क्या, लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है. और
2: स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि कुछ
1: तो कुछ भी बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो.
2: ओके, इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कमजोर हैं. जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात जोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रांग है. दिस इज द बिलीफ सिस्टम. राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो इजियर है या चुप रहना वो इजियर है? रिएक्ट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा. बात आई, रिएक्ट कर दिया, उसने शोर मचाया, उससे ज्यादा जोर से शोर मचा दिया, उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया, ये तो इजी है. लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर स्ट्रेंथ. सो विच इज मोर पावरफुल?
1: पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है?
2: हाँ, अब दुनिया में जीना है. दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए.
1: मैं तो समझता हूँ जीने के लिए दो थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा.
2: नो प्रॉब्लम. एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया.
1: आसपास वाले भी डर के रहते,
2: सब लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं. फिर टेलीफोन वाले का फोन आया, उसने कुछ गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया. फिर किसी प्लम्बर को फोन किया, कार्पेंटर को फोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया. ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया. फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया. बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए. सिनारियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस.
1: करेक्ट.
2: ये बिलीफ सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड. लेकिन हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज किया, हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज किया, मैंने अपनी शक्ति को गवाया.
1: शक्ति कैसे कम हुई? शक्ति तो बढ़नी चाहिए. इसको बोला काम हो गया, उसको बोला काम हो गया, उसका और मैं पावरफुल हो गया.
2: कौन सी एनर्जी यूज करके बोला? अगर सिर्फ बोला और काम हो गया इज फाइन.
1: नहीं, गुस्से वाली एनर्जी.
2: तो गुस्सा, हर बार जब गुस्सा किया, हर बार जब शोर मचा दिया, हर बार एक फोन उठाया, खट खट खट खट चिल्ला दिया दूसरे पे, काम हो गया. एनर्जी कौन सी क्रिएट की? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई द बीइंग कितनी टर्बुलेंट टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की. एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्बुलेंट एनर्जी सिर्फ यहां नहीं डिस्टर्ब करती. उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले.
1: मुझे तो पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में. या
2: उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले. ये तीन पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे.
1: कभी कभी ज्यादा गुस्से में तो हाथ कांपते हैं.
2: यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे. अब बात हो गई, काम हो गया, टर्बुलेंट इतना. सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी. वी हैव सीन के हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है. मतलब वो टर्बुलेंट थॉट पावरफुली टर्बुलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा. अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम. एंड यू नो, नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है.
1: सिस्टर इजी भी तो हो गया ना काम.
2: काम हो गया ना,
1: छुट्टी में काम हो गया.
2: अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, फॉर मी टू फील पावरफुल आई विल नीड टू ऑलवेज बी श्योर दैट अदर पीपल आर इन माई कंट्रोल.
1: फॉर मी टू,
2: फिर से ध्यान से देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डीप और इसकी हर एक की चेकिंग होने वाली.
1: मुझे दोबारा सुनना.
2: जितना हम आज, क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए. बिकॉज जब ऐसा होता है, आई एम पावरफुल. चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल. आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन. सब मेरे
1: भी करते हैं.
2: हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट मैन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी. ये क्यों? और ये बढ़ता जाएगा. ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है. जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना. एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल.
1: एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा. आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है.
2: नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है. लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है.
1: अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो देट मीन्स मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है।
2: हर बार बीमार हो रहे हैं हर 10 मिनट बाद। अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई विल से वीक बॉडी। नो, थोड़ा सा मौसम बदले, बीमार। थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया, बीमार। थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला, बीमार। तो आई विल से वीक बॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी? डॉक्टर विल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई, बीमार। फिर कुछ हुआ, फिर बीमार। फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार। कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई। आई 10 मिनट, रही फिर 10 मिनट, ठीक हुई फिर 10 मिनट, रही। धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माई वे ऑफ लिविंग, माई नेचर। फिर लोग
1: बीइंग एंगर। अब समझ में आया मुझे।
2: बीइंग एंगर, देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है। मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं। क्योंकि आई हैव गॉट इन टू द पैटर्न। पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया, फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया। आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं। आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन। धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर मेरा बन गया वो संस्कार।
1: नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है।
2: देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे। अब जितनी बार हुए, टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ। रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अपनी पावर, एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज। एवरी टाइम, अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ू तो साइन द बॉडी बिकमिंग वीक। इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक, एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है। जितनी, अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज।
1: फिर से कहिए।
2: जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज टू फील पावरफुल।
1: माय गॉड,
2: सपोज आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, ओके? इफ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, आई नो आई एम पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी, आई विल बी फाइन। दिस इज पावर। पावर नॉट ओवर सिचुएशन, पावर नॉट ओवर पीपल, पावर ओवर माई सेल्फ। ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि इट मीन्स मेरे पे अपने पे गारंटी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो आई एम फाइन। जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल। लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर
1: और कम होती जाएगी।
2: ना दिस इज अ डाउनस्लाइड, एंड दिस इज अ वेरी फास्ट डाउनस्लाइड। वी आर नॉट इवन गोइंग टू रियलाइज इट्स गोइंग टू गो सो फास्ट। ऐसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, एंड जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उतना लोगों को कंट्रोल करना, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। जितना
1: एडिक्शन यूज कर रहे हैं,
2: इट्स एन एडिक्शन। नो, इट्स अ वेरी डीप एडिक्शन दैट पीपल शुड बी इन माई कंट्रोल। आई नीड टू चेक दिस वेदर आई हैव दिस एडिक्शन। लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए, दिस इज अ वेरी डीप एडिक्शन। हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं,
1: तो दिमाग हिल गए सुन के ये वर्ड।
2: इट्स वेरी डीप एडिक्शन।
1: एडिक्शन है,
2: ये एडिक्शन है, क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ना, हर एक के साथ चाहिए ना। फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी.
1: उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा, फिर
2: अनइजी हो जाएगा ना. आप किसी के भी साथ होंगे, यू विल वॉन्ट देम टू बी द वे यू वॉन्ट देम टू बी, किसी के भी साथ. अब वो हर एक के साथ हो जाएगा क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन,
1: मेरे जैसे कि एक और सामने मिल गया वो वाले एडिक्शन वाला,
2: बहुत बड़ी टक्कर है. दिस वी हैव टू चेक, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है. सिचुएशन और लोग, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे. रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे, लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजोरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश. चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी. खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो. तो मेरा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी,
1: एंड कंट्रोल देम ऑल द टाइम.
2: सारा दिन कंट्रोल है, एंड राइट फ्रॉम कंट्रोलिंग अ लिटिल चाइल्ड टू कंट्रोलिंग एवरीवन अराउंड मी. अब स्पिरिचुअलिटी इस फोकस को शिफ्ट करती है, फर्स्ट विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते. हाँ, क्योंकि हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, या क्योंकि हम पोजिशन में है. यू नो, सपोज आप बॉस है, आपका स्टाफ है, आप पोजिशन में है. आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं, राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं.
1: लिहाज है
2: नहीं, पोजीशन है. ये आपके एक पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली. इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से,
1: आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
2: नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
1: नहीं,
2: आउट ऑफ फियर.
1: ओल्ड बिलीव सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो,
2: लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम. फिर
1: तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी.
2: यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा. सी, आपने कुछ कहा,
1: अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है,
2: सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है,
1: और मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं समझू.
2: नहीं, लेकिन आपको वो डिसरेस्पेक्ट इसलिए लगेगी, सपोज आपने कुछ कहा,
1: अगर बोलेगी नहीं, बीवी नहीं बोलती है, देख लेते हैं आप ज्वाइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े हैं ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो, बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो. तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे ऐसे थोड़े आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरेस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहे.
2: परफेक्ट. क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम चेक करेंगे. आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है, आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट.
1: या बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया.
2: तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया, राइट? आपने बोला, उसने किया, दिस वॉज रिस्पेक्ट.
1: मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा,
2: तो रिस्पेक्ट. अब इसको देख लो, आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया. क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर नहीं, अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते.
1: हाँ, मजबूरी से करता है,
2: मजबूरी से करता है आदमी. अब मजबूरी से कर रहे हो मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा. ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट. ये सारी थॉट्स एनर्जी कौन सी है? हैवी, हैवी. मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है. आपको लग रहा है यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल. लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट, 10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसे क्रिएट की, इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। इन्होंने बोला मैंने किया, हर बार अपनी बात मनवाते हैं। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करें? आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन। ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं और आप मेरी उदासी का कारण है। दिस इज हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी। व्हेन आई होल्ड समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन पेन, पेन मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट एवर आई हैव डन, दैट पर्सन इज गेटिंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना। हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी? मैंने बोला, हो गया, मैं रूम में आया, उठ गए, जैसे मैंने कहा करते गए। मीन्स दे रिस्पेक्ट मी, दे फियर मी। फियर एंड रिस्पेक्ट एक टाइम पे नहीं रह सकता है, फियर एंड लव एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं। ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। एनर्जी ऑफ फियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज, एनर्जी ऑफ फियर। मुझे डर लगता है इनसे, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचे। तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब जितना अब ये आपके लिए क्या रिस्की है। एक, आपको कंटिन्यूअस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी। अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूअस आपको वो एनर्जी मिलेगी। जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है, वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से माई पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। वन, because my sense of power has become dependent on other people, and second, that other person is continuously sending me negative thoughts. ye dikhai nahi dega, ye kisi ko dikhai nahi dega ki kaise ho raha hai, lekin dusron ki vibration meri energy ko suck karte jayegi. jab log mujhse darte hain, wo dar un par effect kam, mujh par effect zyada karega, क्योंकि सबका डर मेरी ताकत को।
1: लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे,
2: हाँ,
1: तो वो जो उनके अंदर दबा हुआ है सप्रेशन, वो खट खट खट खट खट खट खट कर वापस बैकलैश आता है।
2: वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो इसलिए बैकलैश आएगा क्योंकि थॉट लेवल पे वो शुरू से था,
1: वो अंदर भरा पड़ा है। और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा, और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा, और तब उसको ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा।
2: बिकॉज फियर ऑफ पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। पहले पोजिशन थी ना, एज या पोजिशन, रिलेशनशिप, उस पोजिशन से अब वो बाहर निकलने लगा है। किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी। अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है। जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वाज इन माय कंट्रोल। अब क्योंकि आपने कहा मैंने माना, फिर आपने कहा मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल। जहां पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहां एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी। विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल? दिस इज वेरी सटल, क्योंकि जहां एडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहां ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी ना किसी चीज पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते।
1: मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था। शादी के 20 साल बाद शी वॉज वेटिंग फॉर द डॉटर टू गेट मैरिड। जैसे शादी हुई दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गई और डिवोर्स किया। कब से बर्दाश्त कर रही थी?
2: मजबूरी थी।
1: हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना,
2: टूटा
1: नहीं, रीजन क्या था? हाँ। कि बेटी की शादी।
2: यस, तो वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई। जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया। लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना, दैट्स ओके। 20 साल बाद हुआ, 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, 20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक।
1: 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही,
2: कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, 20 साल कैसे बीते वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी। तो हम अगर, जैसे आपने भी किसकी पोजीशन
1: देखी, पति के लिए एडिक्शन,
2: नहीं एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन।
1: अच्छा,
2: दिस वेरी इम्पोर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बिचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम, विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस। उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन, इवन इन दिस पोजिशन। वॉट यू से,
1: सबसे तो उस पर कंपैशन करना चाहिए।
2: एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजिशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड, डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, इवन डेफिनेशन ऑफ लव, इफ यू लव मी डू दिस फॉर मी।
1: नहीं, बट आप मुझे थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों विक्टिम है?
2: अच्छा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है।
1: हाँ?
2: हस्बैंड बोलते गए, वाइफ करती गई।
1: हाँ?
2: जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया।
1: हाँ?
2: तो जो मजबूरी से करता रहा, वो भी 20 साल ऐसे। हाँ? नहीं थोड़े देर, थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही। कहना मानती गई, कहना मानती गई, दुखी रही, एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। This is the story of the wife, and everybody will have mercy for the wife. बिचारी victim है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, exploitation है ना ये पे। Husband किस position में है? Husband outwardly ये feel करे, I'm very strong, मैं जो बोलता हूँ मेरा कहना माना जाता है, लेकिन actually the being की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी। जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ये लास्ट टाइम कहा, जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए, उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी। वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी, व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की। आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमें पहुंचती हैं, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दे सकिंग एनर्जी। मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा। 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी। अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी। दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल।
1: तो ये हस्बैंड क्या हुआ?
2: ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है। मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं।
1: फैंटास्टिक पॉइंट, मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है। थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974555.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च वी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
9: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
10: Desh bhakti to yaad aa gayi.
11: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
8: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
12: Woh ye border chal rahi hai?
8: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
4: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
5: Oh jo hukam meri sarkar.
4: Oh aa kidhar? Harry Spark wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
5: Akshara Jewelers di dooji location.
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
13: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
14: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
13: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
14: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: कस्टमर सर्विस जरूरी है भाई। बड़ी गल पता की है, ये चीज ना उम्मीद भी रखी जा सकती है, मेन गल। थैंक यू जी, थैंक यू सर।
1: सेम टू यू टिल्ला साहब, हैव अ नाइस डे।
0: वाह भाई वाह, ना ये देखो जिन्ना कस्टमर केयर हो गया है ना, फैसिलिटी इस तरह दी हो गई है कि लोगों नु हमेशा वधिया वधिया सही तरीके नाल ही गल करना एंड ऑल दैट, ये कोई बड़ी गल नहीं है। सर आप प्लीज आंखें बंद करके सोया करें।
2: मिले शिलांकन यू नो माधुरी डिस्की।
0: श्रीलंकस बड़े प्यारे लोग ने। मैं ना मतलब मैं कितने ना फ्लावर शॉप सी कोई प्रेस्टन च, मैं फ्लावर उथों खरीदे कि तू कुछ कार्ड वगैरह लिखना। मैं क्या हाँ मैं लिख लगा। उन्हें ना देख लिया कि मैं ना नाम अपना लिखा है ना फ्रॉम कृष्णा। ओ यू आर कृष्णा, या दिस इज क्लोज टू रामा। मैं क्या हाँ ठीक है। कहिंदा दे अच्छा वो ना इस तरह ना जिस तरह बंदा थोड़ा टेंशन च हुंदा, वो कहिंदा कहिंदे कि थोड़ा जिहड़ा गॉड सी उन्हें आके श्रीलंका च राजा मारिया सी। मैं देखो भाई जी
2: श्रीलंकन टेकअवे भी वेरी यमी ड्रम्स करके
0: की करके ड्रम्स कर
2: ड्रम्स yep.
0: मैं तो तुक्के नाल पहुंच गया सीगा उत्ते। यूजुअली मेरा उद्दा कोई काम नहीं
2: yeah.
0: पर मैं पहुंच गया सीगा। ते आपा हुन लास्ट कॉलर लवांगे अपना। बसंत जी तुसी आने रहो।
2: सत श्री अकाल बसंत जी।
0: बसंत जी तुसी आने नहीं। बसंत अच्छा अच्छा नहीं बसंत जी तुसी आने रहो। हेलो
2: धर्मिंदर।
3: मैं धर्मिंदर ना तुहाडे सामने बड़े है, लाफिंग बुद्धा है।
0: ओ बल्ले। वाह वेरी गुड।
2: लाल जी थोड़ी पेमेंट थानू घरे पहुंच जूगी।
0: ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
2: ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚ ਕਹਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
0: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜੁਵਲਰਸ ਵਾਲੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ $185 ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ।
2: ਲਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੇ ਕੰਗਨ ਦੇ ਦੇ ਲਾਲਾ।
3: ਕੋਈ ਨੀ 50 ਤੱਕ ਆ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ
2: 150 ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ।
0: 150 ਹਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। 150 ਤਾਂ ਕਦੀ
2: ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆ ਜਾਣਾ।
0: अच्छा गाइस यूएन ने नोनिया जी नू बेस्ट स्टॉक ब्रोकर एडवाइजर दा अवार्ड दिता। वॉरेन बफे कोमा जी ने जी लाल जी
3: एक बीबी दी किन्नी उपाधियां
0: मल्टीफैसेटेड मल्टी टैलेंटेड
3: multi-titled look at my follower.
0: Oh yaar.
3: दो महीने की किस्त मिस हो अपना किस्त लैन घर आंदे सैमी साहब ने नहा लेने सैमी साहब पता भी अपना किस्त लैन आ गए सैमी साहब गए फटना बहार दे बहार अपना ना अपना बाबे घूम रहे अपना कपड़े पा गए कपड़े पा गए बाबे मिल जाते है पता लगे नाले एक बाबा जसोवाल होता सैमी साहब कद हाथ रहा कहना भाई थोड़ा किन्ना लोन है
0: जसवाल भाई नु सोचना भी इस तरह कि बाबा कैसा फकीर है फकीरी तो झलक नहीं रही है
3: अनीता ना कल अनीता ना मेरा चश्मा देखने लग पी कहीं चश्मा दिखाया अपना मैं देखना कि दिखता ना लाया
2: देखो इनू शेरो शायरी च कह के देखो ना कल जो पहना मैंने उसका चश्मा हाँ तो करो
0: यार हाँ ना ना या वाह नहीं सॉरी अच्छा हाँ जी हाँ जी
2: कल जो पहना मैंने उसका चश्मा तो समझ आया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ उसकी नजर में
0: वाह क्या बात है गाइस मीटर बहर काफिया रदीफ सारे फाहल आ चुके हैं इससे ज्यादा आयरोनिक नहीं हो सकता जी दिस इज द बेस्ट असि आज लिए थोनू दे सकते हैं
2: लाल जी आज आज थोनू पिछली बारी भी तुसी लारा ला गए तुसी के हां आवांगे तो तुसी आए नहीं खुला चैलेंज दे के गए होने आज कहंदे मैं कविता सुनानी है ते लाल जी नु कहो के कुछ लिख के रखन
0: वाह अच्छा
3: तो पहले उन्होंने कविता सुन लांगे की सुनांदे
0: हां हां ए भी ठीक है तुसी भी जेड़ा कत्ल करना सुन के करो पहले क्या करना
2: नो आई एम फैन ऑफ लाल जी द वे ही राइट गाना ना बस ऐ खड़े खड़े गाना बना देने बस
0: लाल जी दा मैं वो परवाने ते जेड़ा ने पैं पैं वाला कीता है ना बाऊ बाऊ वाला ओ वो इतना कैंट सी ना बहुत सिरा सी
2: अब बाऊ तो पहले जेड़ा शब्द किया ना मेनू गाड़ लगी सी
0: नहीं नहीं उन्होंने उच्च बोल दे की मेनू शेर नहीं याद आ रहा लाल जी दा पर लाल जी दा सामने
2: लाल जी खुद
0: लाल जी आप ही थानू याद है नहीं एक तो राइटर इन्ने मतलब हैवी ने ना इन्होंने पिछली अपनी लिखी लिखत याद नहीं होनी
2: यस
0: लाल जी आज इदा करो कॉल करके उही वाला सुनायो सानू प्लीज डन हो गया
3: ठीक है
0: चलो थैंक यू जी
2: लाल जी हैव अ नाइस डे मिलते हैं बाद चों बाय बाय
0: जी ए सीगे साडे नाल लाल जी ते हुन समा हो चुका है देखो गाइस थोड़े मैसेजेस बड़े प्यारे प्यारे आए हुए ने मैं आके पढ़ांगा पक्की गल है पर मेनू ना हुन भजना पैना क्योंकि जे मैं भजया नहीं ना फिर बहुत साडे जेड़े ना फिर वो भी मेरे नाल सनी देओल बन सकदे है ठीक है टाइम थोड़ा ओवर हो गया गाइस मैं यूं ही गया और खबरों को लेकर यूं ही आया सुनते रहे रेडियो हांजी 1674
2: AM

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
3: देशभक्ति तो याद आ गई।
4: देश कौन सा है? ये भूल गया।
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: ये बॉर्डर चल रही है?
1: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है। From October 9th at cinemas near you.
6: सत श्री अकाल to all the radio हांजी listeners.
7: ओ देखो हो गया फिर, दौड़ होगी शुरू। देखो क्या

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.